हर भाणा गुर पहाया मेरा हर प्रभ करे शाबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पहावै जिस

शांत। प्रभ विपत निवारण तिस बिन अवरना कोय जियो, सदा सदा हर सिमरिय जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल पूर रहया एक निमख मन होना विसरै, गुर चरण लागे दिन सभागे।

कस कसवटी सहै सोताओ नदर सराफ वन्नी चढ़ाओ जगत पशु अहंकाल कसाई कर करतै करणी कर पाई जिनकी

विचारो दर्शन पेख करहो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बार है अंतर एक सरे बहो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाइय पुरखा बाहुड़ चोट ना खाइय नानक बोले गुरमुख।

इहो भेख निवासी किस वखर के तुम वणजारे क्यों कर साथ लंघावहो पारे। गुरमुख खोजत भए उदासी दर्शन कै ताई भेख निवासी साच वखर।

जाए पुछहो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच संभालेन नानक आए से परवान पए नानक आए से परवान पए जे सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिन्ना का अंधला सिख भी अंधे कर्म करें ओए पहाड़े चलन अपने।

पौड़ी। मनमुख मोहगुबार है दूजै पाए बोलै, दूजै पाए सदा दुख है नित नीर विरोलै। गुरमुख नाम ते आई है माथ तत कढ़ोलै, अंतर प्रगा

लागी सुखमन पोचन हारी रे। तीर्थ बरत नेम सुच संजम रव सस गहने देओ रे। सुरत प्याल सुधारस अमृत इहो महारस पेओ रे। निचार तार चुवै अत निर्मल इहे रस

जप मन राम नाम सुखदाता सत्संगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पछाता रहा।

ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए तौ गुण नाही अंत हरे, तौ गुण नाही अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ।

जहै दूजै भरम भुलाई हे। गुरमुख जाग रहे दिन राती साचे की लेव गुरमत जाती।

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टि अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक कौ जो

भगत हेत गुर शब्द तरंगा, हर जस नाम पदार्थ मंगा। हर पावै गुर मेल मिलाए, हर तारे जगत सबाया। जिन जप

यह भव जल जगत शब्द गुर तरिया अंतर की दुविधा अंतर जरिया पंच बाण ले जम कौ मार गगनंतर तनख चढ़ाया साकत नर शब्द सुरत क्यों पाइये शब्द सुरत बिन आइये जाइये नानक गुरमुख मुक्त परायण हर पूरे भाग मिलाया।

एक बह सुनहै सुनावहै काना, अजगर कपट कहो क्यों खुलै, बिन सतगुर तत ना पाया, करहै विभूत।

मन हाथी पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर स्यों पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सौ गुर शब्द महारस पाया कुदरत देख रहे मन मानिया गुर शब्द ही

मर मर जम है शब्द ना विचार है। अंतर माया मोह गुबारा ज्यो सुपने सुध ना होई है। एक पंचावार शब्द है लागे सतगुर आए मिलिया बट भागे। अंतर साच रवह रंग राते सहज समावे सोई है। गुर की चाल गुरु ते जापे पूरा सेवक शब्द सियापे। सच्चा शब्द रवे कट अंतर रसना रस चाखे सच सोई है। सदा शब्द रवे कट अंतर रसना

ना गुरमुख होवै सो सच कमावै साची करनी सारी हे कार कमाई जो मेरे प्रभ पाई हो मैं तृष्णा शब्द बुझाई।

गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख, गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख, गुरमुख शब्द समाहा है गुरमुख ना।

बनाई। गुरमुख होवै सो काया सो धै, आप है आप मिलाएंदा। काया विच तोटा काया विच लाह,

है आन दिन गुण रवह दिन राती आन दिन गुण रवह दिन राती रसना हर रस पाया शब्द मर है से मरण सवार है हर के गुण हृदय उरतार है जन्म सफल हर

कुसंगत बह सदा दुख पावे दुखो दुख कमाया सतगुर बाजहु संगत ना होई बिन शब्दे पार न पाए कोई सहजे गुण रह दिन राती ज्योति ज्योत मिलाया काया बिरख पंखी विच वासा अमृत जुग है गुरु शब्द निवासा उठ है न मूले न आव है न जाही निज घर वासा पाया काया सुध है शब्द विचार।

जो शरण परै तिसकी पत राखै जाए पूछो वेद पुराणी हे। जिस हर सेवा लाए सोई जन लागै गुर कै शब्द भरम भौ।

गुण निदान मन तन मह रविया, जन्म मरण की जोन ना पभया, दुख विनाश किया सुख डेरा, जहां तृप्त रहे आगाई है।

पाक खर शराशरयत ले कम्मा बहो त्रिकृत तर्क खोज टोला बहो मारफत मन मार हो अबदाला मिलो हकीकत जित फिर ना मरा कुरान कुतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द।

हर अगम अगाधा निःचल नाम निधान है जिस सिमरत हर लाधा निःचल कीर्तन गुण गोविंद गुरमुख गावाधा सच

सच शाह अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुदनो तोलै भन्नण घड़न समर्थ है।

प्रहलाद आप विगड़िया, प्रहलाद आप विगड़िया, सब चाटड़े बिगाड़े, दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा हुए रघुराया। हाथ खड़ग कर

जाने। दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किसु ना जाने, शब्दे मेल मिलाया रहाउ। आन दिन भगत करह दिन राती, दुविधा शब्दे खोई, सदा निर्मल है जो सच राते।

मस्तक भाग होवै जिस लिखिया सो गुरमत हिरदय हर नाम संहार मधसूदन जपिया उरतार देही नगर तस्कर पंच धातु गुर शब्दी हर का ढे मार रहा।

रहाओ। तिन मत ऊतम तिन पत ऊतम जिन हृदय वसया बनवारी, तिन की सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी। जिन ऐसा सतगुर साधना

रहाओ। गुरसिख हर बोलहो हर गावहो, ले गुरमत हर जपने, जो उपदेश सुने गुर के रा, सो जन पावे हर सुख घणे।

पंजवा साच पदार्थ गुरमुख लहो प्रभ का भाणा सत कर सहो जीवत जीवत जीवत रहो राम रसायन नित उठ पीवहो हर हर हर हर रसना कहो रहा।

जवान निकट बुझ है सो बुरा क्यों करे बिख संचय नित डरता फिरे है निकटे अर भेद ना पाया बिन सतगुर।

मस्तक भाग जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाओ। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपालै सतगुर मेरा मार जीवालै।

आओ। तब्त बुझी पूर्ण सवे आसा, मिटे अंधेर पहे प्रगासा। अनहद शब्द अचर्ज बिस्माद, गुर पूरा पूरा प्रसाद। जहाँ कौ प्रगट पहे गोपाल, ताँ कै दर्शन सदा निहाल।

हम मूड मुगध किस बूझ है नाही, तू आपे देह बुझाई, जो तुद पहावे सोई करसी, अवर ना करना जाई।

सो बड पहागी जिस गोर मस्तक हाथ रहाओ। जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना, जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना, जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ, नाम बिना त्रिग जीवन मुआ।

ओडा कूप गोज खिन काढ़ै, जो ओडा कूप गोज खिन काढ़ै त्यों सतगुर वस्त लहाइयै। जिन्हें ऐसा सतगुर साध ना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाइयै। जन्म पदार्थ पुन

समाहे ज्यों पावे त्यों रास ले सुख नानक पूरा गुर मिले। बसंत महला पंजवां।

पई बसंत महला पंजवा रोग मिटाए प्रभु आप पालक राखे अपने करथाप शांत सहज ग्रह

तेरा सतगुर सुख सहज सेती घर जाते हर आपे खेले हर आपे देखे हर आपे रचन रचाया जन नानक गुरमुख जो नर खेले सो जिन बाजी घर आया। बसंत महला पंजवां हिंडोल।

निस्बासुर नखयत्र बिनासी रव ससियर बेनाधा गिर बसधा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलाधा एक साध बचन अटलाधा।

आद सनकादिक ब्रह्मादिक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमयो मनोहर हर रस जपना।

ताज अभिमहान शरण संतन गहो मुक्त हो है शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिना सुख सुपने पी नाही जन नानक।

ਲਾਏ ਸੋ ਸੱਚ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਵਡਾਈ।

हम हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करै हर जन को मिलिया सुख पाइये सब दुर्मत मैल हरै हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त है जा हर गुण बिचरै हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरै जिन एह प्रीत लाई सो जाने कह जाने जिस मन धरै

सतगुर हर हर नाम दृढ़ावै, हर बोलहो गुर के सिख मेरे भाई, हर भौजल जगत तरावै रहाउ, जो गुर कहो जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पहावै, हर की सेवा सतगुर पूजहो, कर कृपा आप तरावै, परम भूले अगे

दिवसै हौ तिनकै सद बल जांत। ज्ञानी हर बोलहु दिन रात, तिनकी तृष्णा भूख सब उत्तरी, जो गुरमत राम रस खांत रहाव। हर के दास साध सखा जन, जिन मिलिया लह जाए प्रांत। ज्यों जल दुध पिन पिन काढ़ै

कहो नानक मेरो बनयो सुहागो पत सोभा भले अचारे। मलार महला पंजवा। प्रीतम साचा नाम त्याए

कान हर बरस सगल जग छाया, पय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रहा। मिटे क्लेश तृष्ण सब बूझी,

चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी दुख निवारण नारायण सगल भगत जाच है सुख।

और ज्ञान दृढ़ाया बहकार बास जग दी जय। एक जोत एक गोमन वस्या सब ब्रह्म दृष्ट एक की जय। आत्म राम सब एक है पसरे

महंस बला नित उठ उठ जूझ मिरकरी जय। काम क्रोध नगर महंस बला नित उठ उठ जूझ करी जय। अंगीकार करहो रख ले वहो गुर पूरा काढ़ कढ़ी जय। अंतर अगन

गुर का कहया ना चित तरै, कर आचार बहु संपौ संचय, जो किश करे सो नरक परे। एको शब्द